बड़ा जुल्मी बादशाह सी। औरंगजेब ने हिंदुस्तान दे लोकां ते इतना जुल्म कीता कि हद मुका दित्ती जुल्म दी। हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाण लगा, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिते। इतना जुल्म, धार्मिक रहो रीतां ते पाबंदी लगा दित्ती गई। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और फिर आप अपने हाथ विच कृपान फड़ी और हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं एक गल कही, तेरे जुल्म दी अत हो चुकी है, ते हुण मैं इस कृपान दे नाल तेरा जुल्म खत्म करांगा। और सचमुच गुरु साहिबां ने मुगल राज दियां जड़ां पुट के रख दित्तियां।

गुरु साहबां तू जाना वारन वाले प्यारे सिंह दूसरे पासे पहाड़ी राजियां दी 10,000 करीब दे फौज पहाड़ी राजियां ने 3-4,000 फौज पिछे छड़ दीती बाकी फौज लैके गुरु साहबां दे मुकाबले ते आ खलोते सिंघां दी मोर्चेबंदी करके गुरु साहबां ने एक गल कही सिंघो मोर्चे विचों किसे ने बाहर निकल के लड़ना नहीं अगर लड़ना भी पवे वार करके फिर मोर्चे विच आ जाओ अगर दुश्मन हार के भजे ते भजे दा पिछा नहीं करना जदों तक साडा हुक्म ना आवे लड़ाई शुरू हो गई एक पासे तनखावां लैण वाले ओ सिपाही जिन्हां जाना भी बचानियां ने एक पासे ओ सिंह जिन्हां गुरु दे चरणां तों जाना वारनियां ने धर्म वास्ते लड़ना है दुनिया दे भले वास्ते लड़ना है लड़ाई ऐसी शुरू हुई तीरां गोलियां दी जिवें बरसात शुरू हो गई लाशां ते लाशां चढ़ गईयां हर पासे हाहाकार मच गया राजियां दी फौज रड़े मैदान सी इन्हां दा नुकसान ज्यादा हो रहा है सिंह मोर्चे विच सन इस करके इन्हां दा बचा है राजियां ने सलाह की इस तरह ते साढ़े सारे सिपाही मारे जाणगे क्यों ना मोर्चियां ते जा पईए तगड़ा हल्ला करके ए राजे अपनी फौज लैके सिंघां दे मोर्चियां ते जा पए उधर गुरु साहिबां दा हुक्म आया किसे ने मोर्चे विचों बाहर नहीं निकल कमसाण दा युद्ध मचिया सिंह मोर्चे विचों निकलदे ने वार करदे ने फिर मोर्चे विच जा वड़दे ने ते राजियां दा नुकसान बहुत आउण लग पिया राजियां दी सेना इकदम मोर्चियां ते आ पई तां सिंह मोर्चियां विचों बाहर निकल आए ओ हथ दिखाए ते राजियां दे पैर पिछे पैण लग पए उधर साहिबां दा हुक्म आया कि किसे ने भजी हुई फौज दा पिछा नहीं करना ते सिंघां ने ऐसी मार मारी कि राजियां नूं बची हुई सिपाही लैके पिछा भजना पिया पर जिहड़े सिंघ सन जित दी खुशी विच अज पहली वारी गुरु दा हुक्म भुल के अन सुनिया करके भजी जांदी फौज दे पिछे भज पए कि अज इन्हां नूं घरों करी पहुंचा के

हमारी जेबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए हर तुम बड़ अगम अथाह।

0: करसम बेनती कृपा करसम
1: बेनती शर बेनती बेनती हर कृपा कर
2: निधर निधर निधर

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी

दो प्रेमी आए, इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकिया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए नी।

गुरु साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाहीं, जोग नाहीं, नाहीं सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सही।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के

पाछे कछु ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैनु

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने, इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसी तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआ ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वो संत नहीं, पता है वो कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

जिन्हां ने गज साढ़े तै तै धोतियां साढ़े तीन दिन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनिया ने तेरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ा जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ा नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के

कि जिस तरह पानी दे विच बगला जाके एक लत दे पार खड़ा हो जांदा है अखां बंद करके एदा रंग चिट्टा हुंदा है ते पानी दे विच रहण वालियां छोटियां छोटियां मच्छियां सलाह करदियां ने चलो पैना बड़े वड़े संत महापुरश आए ने जेड़े एक लत दे पार अखां बंद करके सिमरन कर दे वो सारिया मच्छियां ते आंदियां ने दर्शना वास्ते बगले नु संत समझ के पर बगला जिहड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है ओ ते मत्था टेकदी ने संत समझ के ते ओदो ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड़न दी करदा है। भगत जी कहंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के खा जा।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपे है ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इन पखंडा तो

stagione di Gesù. एक दिन आपने अच्छी प्रसादा तैयार की, मन प्यार से सता रहा है, आप रसोई च बह के गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भोजन तैयार किया, इस ख्याल में कलगी का किसी पातशाह जी ने आज अपने अच्छी प्रसाद किया। माता जी श्री जी जिसने कलगी का किसी पातशाह जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं, उसे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी कर बुलाया। सिखा कवि जी नु बुला के ले सिख आए, हाथ जोड़ के अरदास की, होर लोग

भगत नामदेव जी अपने शब्द विच ये दसदे हन कि दुनिया दे काम करदे हां परमेश्वर दा नाम

ओ लड़का पतंग उड़ांदा होया अपने साथियों दे नाल गल्लां भी करदा है, पर उहदा असली ध्यान अपनी डोर विच हुंदा है, किधरे पतंग आड़ ना जावे।

मैं उदा पुत्र ही नहीं, पूंगड़ा पुत्र नुके है। ए मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए।

तू हसदा खेडदा नहीं, बड़ा उदास रहना। जेड़ा नाम तेनू हसन खेडन नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा विसरी मर जा, आखने औखा साचा ना। ऐ मां जे मैं नाम जपना वा ता जीना, जे नाम नहीं ते फिर नानक भी नहीं। आखा जीवा

मैं परमेश्वर दे कोल नू विछड़ के आए। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है, मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है। कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिड़ी मैं खावा ते ए मेरी नाम दी भुख मिट जावे।

वैद ने हाथ जोड़ ले, कहिंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ होर समझिया सी, पर तू ता आप रब निकले। जेड़े दुख तू दसे ने, इन्हां दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे। ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर, मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने, मेरे मन दे रोग दूर।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बन।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक उन्हां दा